0: खूब सुरे, खूब खूब छान. सो वंस अगेन दिनेश जी, थैंक यू वेरी मच. परितोष, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर म्यूजिक प्लस इंट्रोड्यूसिंग मी टू योर पेरेंट्स. थैंक यू वेरी मच.
1: एंड वी वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक यू प्रांजलि एज वेल एज आशीष जी फॉर हिज सपोर्ट. आई मीन
2: Yeah, thank you for inviting us.
0: Thank you. This has been a truly an honor.
1: Yeah.
2: It has been a very memorable experience.
0: Yes, such a bliss. So friends, this is KZSU Stanford 90.1 FM. I'm Pranjali and you are listening to